हमें भी ऐसे पीछे करना अच्छा नहीं लगता, हम भी कल्चर लॉन्ड हैं। इतने सालों से हिम्मत जुटा रहे हम, आज बोल देते हैं पसंद हो तुम हमें, तुम डिसाइड कर लो क्या करना है।

0: सूचना संगीतम मनोरंजन को अटल साहिर यो हो रेडियो साहिर 99.8 मेगाहर्ज
1: सुर में गाना सीखे पाधनीसा ऐप के साथ AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।

0: की गाड़ी चला रहा था।
1: हड्डी मड्डी बची हूँ मैं।
2: फालतू है साला, मुफ्त में सुन रहा है, मत देख उसको। चल छोड़, मैनेजर देख रहा है।